0: A traditional music piece entitled Salibis ng Nayon, and that was rendered to us in instrumental version by the late Richard Tan, and was actually used in a fashion show back in the day. We continue to share to you information about the upcoming election, and this is in the many languages that we speak here in multicultural Australia.
1: Handa ka na bang bumoto? Ang halalang pederal ay inihayag na. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan o tirahan, naglabing walong taong gulang, o naging isang mamaya ng Australia, kailangan mo i-update ang iyong detalye ng pagpapatala o mag-enroll upang makaboto bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Bisitahin ang aec.gov.au o kumuha ng enrollment form sa limang tanggapan ng AEC at ibalik ito sa AEC bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Ang iyong boto ay makakatulong sa paghubog sa anyo ng Australia. Autorisado ng Electoral Commissioner, Canberra.
2: Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε? Οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν ανακοινωθεί. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή την διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε για να ψηφίσετε πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Επισκεφτείτε το aec.gov.au ή λάβετε μια αίτηση εγγραφής από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής AEC και επιστρέψτε την στην Επιτροπή πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Η ψήφο σας θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της Αυστραλίας. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα.
0: Information in the many languages that we speak here in multicultural Australia, and this is in regards to the upcoming elections.
3: क्या आप मतदान के लिए तैयार हैं? फेडरल चुनावों की घोषणा हो चुकी है. अगर आपने हाल ही में अपना नाम या पता बदला है, आप 18 वर्ष के हुए हैं या आप एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने हैं, तो आपको सोमवार को रात 8 बजे से पहले अपने नामांकन विवरण अपडेट करने होंगे या मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराना होगा. aec.gov.au पर जाएं या AEC के किसी भी कार्यालय से अपना नामांकन फॉर्म ले लें और सोमवार को रात 8 बजे से पहले उसे भरकर AEC को भेज दें. आपके वोट से ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप बनाने में सहायता मिलेगी. चुनाव आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत.
4: 연방 선거일이 발표되었습니다. 최근 개명 혹은 주소 변경을 했거나 18살이 되었거나 호주 시민권자가 된 성인은 월요일 오후 8시까지 본인의 등록사항을 업데이트하거나 선거인 등록을 마쳐야 합니다. ac.gov.au를 방문하거나 AEC 사무소에서 등록 양식을 받아 월요일 오후 8시까지 작성된 양식을 AEC에 제출하세요. 여러분의 투표가 호주의 미래를 만듭니다. 캔버라 선거관리위원회 위원장의 승인을 받았습니다.
5: 您准备好投票了吗？联邦大选的日期已经公布。如果您最近更改了姓名或地址，或刚满18岁，或者新近成为澳大利亚公民，您必须更新自己的登记资料，或在周一晚上8点前登记参与投票。请访问 aec.gov.au 或前往任何一个澳大利亚选举委员会办事处索取登记表，并在周一晚上8点前填好寄回。您的选票将帮助打造澳大利亚的未来。选举专员于堪培拉授权。
0: 98.5 2 000 FM. Resilience and Well-being Radio, sharing to you music for you to be able to just relax at this time and enjoy the moment.

0: Radio 2098.5 FM Community Program.
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: Swagat hai Darpan Hindi Karyakram mein. Aap sunenge samachar, vichar, sangeet aur samajik suchnaye.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: आज रविवार युगाब्द 5126, कलयुग विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी 21 जून 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और अजय गुप्ता का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। चक्रव्यूह में फंसा मॉनसून बारिश को तरसते 7 राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बोले सीएम योगी, सबूत है तो एसआईटी को दें। पीएम मोदी ट्रंप बैठक का असर, अंतिम चरण में पहुंचा भारत अमेरिका व्यापार समझौता। महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर, उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने अचानक बदला पाला। डीआरडीओ ने किया लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, भारत को बड़ी कामयाबी। अयोध्या में रामलला को चढ़ाया सबसे महंगा आम, कीमत जानकर चौंक जाएंगे। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का फिर दावा। यूपी में बाबा जी का राज है, कोई कैसे छीन लेगा पैसे। और भारतीय सेना ने बदले यूनिफॉर्म नियम, अब बंडी जैकेट को मिली मंजूरी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। देशभर में जहां एक तरफ जून की शुरुआत में मॉनसून की रफ्तार ने उम्मीदें जगाई थीं, वहीं पिछले 11 दिनों से मॉनसून में आई सुस्ती ने कई राज्यों को झुलसने पर मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत देश के 7 बड़े राज्य इस समय बूंद बूंद बारिश के लिए तरस रहे हैं। हालत यह है कि इन राज्यों के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और सामान्य से 60% तक कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून पिछले 11 दिनों से तेलंगाना में अटका हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसकी मुख्य वजह एक ही समय पर 5 अलग अलग मौसमी प्रणालियों का एक्टिव होना है, जो मॉनसून को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के पास कोई सबूत है तो एसआईटी को सौंपे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, एसआईटी जांच में सब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम हो, अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने यह जानकारी दी। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात के एक दिन बाद आया है। विक्रम मिश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और अब दोनों देश इसे अंतिम रूप देने के करीब हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, बाजारों तक पहुंच आसान होगी और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता हमेशा से अनूठा रहा है। अयोध्या के किसान ओम प्रकाश सिंह ने इस रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी है। उन्होंने करीब 2 वर्ष पहले एक प्रयोग किया था। उन्होंने जापान की सुप्रसिद्ध और बेहद कीमती मियाज़ाकी किस्म का एक पौधा अपने बाग में रोपा था। उद्देश्य था यह परखना कि क्या अयोध्या की जलवायु इस विदेशी और शाही फल के अनुकूल है या नहीं। ओम प्रकाश की मेहनत और रामलला की कृपा से यह प्रयोग न सिर्फ सफल रहा बल्कि इस साल उनके पेड़ पर करीब एक दर्जन फल आए हैं। ओम प्रकाश सिंह ने अपने बाग में उगे दुनिया के सबसे महंगे जापानी मियाज़ाकी आम का पहला फल बाजार में बेचने के बजाय सीधे प्रभु रामलला के चरणों में अर्पित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस आम की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक है। आकार और वजन के हिसाब से इसके एक फल की कीमत करीब 80,000 से 1 लाख रुपए तक बैठती है। योगी सरकार में मंत्री और सुभाष सपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और रामगोपाल यादव प्रोफेसर से प्राइमरी के मास्टर बनेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना यूपीटी के 6 सांसद शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए। इसके बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों की संख्या घटकर 3 ही रह गई। बहरहाल ऑपरेशन टाइगर से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। दावा किया जा रहा है कि इस घटनाक्रम के पीछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी बड़ी भूमिका है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 15 जून 2026 को ओडिशा तट के पास स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO के अनुसार परीक्षण के दौरान निर्धारित सभी उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल कर लिया गया। चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज द्वारा तैनात विभिन्न ट्रैकिंग उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों ने मिसाइल के प्रदर्शन को सफल साबित किया। LRLACM पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई मिसाइल है जिसके सभी प्रमुख उप प्रणालियों का विकास DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग साझेदारों ने मिलकर किया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद में विकास कानून व्यवस्था पर खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की डोर सीधे आतिथ्य के हाथ में है, यह बाबा जी का राज है। जेवर में आज किसी की भी हिम्मत नहीं है कि किसान या आमजन से पैसे छीन ले। हज से लौटे एक बुजुर्ग किसान ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और बड़े प्रोजेक्ट जेवर की नई पहचान बने हैं। पहली बार हवाई जहाज में बैठकर लखनऊ पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री से कहा कि जिस जमीन पर कभी वे खेती करते थे आज उसी जमीन से उड़ान भरते विमान उत्तर प्रदेश के बदलते भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भारत और योगी जी ने उत्तर प्रदेश बदल दिया। किसान हंसराज ने कहा कि जैसे ही वह सुबह एयरपोर्ट पहुंचे उनके साथ आए अधिसंघ के किसानों के लिए यह अनुभव विशेष था। उनके साथ आए 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने आज तक हवाई जहाज को केवल आसमान में उड़ते हुए देखा था लेकिन मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उन्हें उसमें बैठकर यात्रा करने का अवसर मिला। भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल की बची हुई परंपराओं को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी ड्रेस रेगुलेशन में व्यापक बदलाव किए हैं। सेना ने औपचारिक अवसरों पर क्लोज नेक बंडी जैकेट पहनने की अनुमति दे दी है जबकि समारोहों में इस्तेमाल होने वाली पाउच बेल्ट को कई ड्रेस कोड से हटा दिया गया है। नई नियमावली में औपनिवेशिक दौर से जुड़े रॉयल जैसे पुराने शब्दों को भी हटाया गया है। देश की भावनाओं और विकसित हो रही संप्रभु पहचान को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनका उद्देश्य औपनिवेशिक युग की शेष परंपराओं और प्रतीकों को हटाते हुए भारतीय सेना की गरिमा, कार्यक्षमता और गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखना है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,45,860 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 94.33 रुपये और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 66.12 रुपये। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम और आज आपके साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अजय गुप्ता और संजीव शर्मा।
3: संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? आपकी बुलंद आवाज़ और धार प्रवाह जो आप बोलते हैं, इसका रहस्य क्या है?
2: कोई रहस्य नहीं है सर, बस आप लोगों की मेहरबानी है और क्या।
3: नहीं, पर आप हिंदी के शब्दों का चयन इतना आपका सुंदर होता है
2: जी,
3: और बिना रोके आप और धार प्रवाह बोलते हैं और आप दर्पण रेडियो के सुनने वालों को जो है आप अगर पूछें तो वो आपके समाचारों का वेट करते हैं, खाते हैं। आपकी बुलंद आवाज़ और धार प्रवाह जो आप बोलते हैं, इसका रहस्य क्या है?
2: कोई रहस्य नहीं है सर, बस आप लोगों की मेहरबानी है और क्या।
3: नहीं, पर आप हिंदी के शब्दों का चयन इतना आपका सुंदर होता है
2: जी,
3: और बिना रोके आप और धार प्रवाह बोलते हैं।

वाला दो घंटे हम आपका मनोरंजन कर सकेंगे। और श्रोताओं, अब समय होता है प्रभु वंदना का, और उससे पहले सुनते हैं कि आज का विचार। आज का विचार थोड़ा लंबा है लेकिन बड़ा सुंदर था, और ये जो कथन है वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा बताया गया है। तो विश्व योग दिवस पर जब हम योग की चर्चा करते हैं तो प्राय हमारा ध्यान आसनों, प्राणायाम और शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित हो जाता है। निसंदेह ये योग के महत्वपूर्ण आयाम हैं, लेकिन योग का वास्तविक स्वरूप इससे कहीं अधिक व्यापक है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और चेतना को परिष्कृत करने का विज्ञान है। आज जीवन में असंतोष का एक बड़ा कारण यह है कि हमने सम्मान और कृतज्ञता की भावना को खो दिया है। स्वस्थ शरीर, चलती हुई श्वास, प्रकृति का सौंदर्य, परिवार का स्नेह और जीवन के अनगिनत उपहार हमें इतने स्वाभाविक लगने लगे हैं कि हम उनका मूल्य ही भूल गए हैं। योग हमें पुनः कृतज्ञता की ओर लौटाता है। कृतज्ञता से संतोष आता है और संतोष से मन में स्थिरता आती है। ज्ञान के प्रति सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। जब हम किसी ज्ञान, शिक्षा या मार्गदर्शन को श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं तो हमारा मन अधिक ग्रहणशील हो जाता है। सम्मान हमारी चेतना को जागृत करता है और सजगता को बढ़ाता है। यही सजगता ध्यान को गहरा और जीवन को अधिक सार्थक बनाती है। तो चलिए सुनते हैं एक भजन, और आज का भजन थोड़ा स्पेशल है, और क्या स्पेशल है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपको समझ में आए तो जरूर हमें व्हाट्सएप पर लिखिएगा।

0: तो श्रोताओं ये भजन जो मैं स्पेशल बात कह रहा था कि स्पेशल है थोड़ा अलग से है जी हाँ इस भजन को डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा गाया हुआ है अभी तक हम लोग को जो है उनकी कविता बट इतना खूबसूरत आवाज़ सुन के बड़ा अच्छा लगा
1: शायद ही कोई गेस कर सकता था कि ये कुमार विश्वास की आवाज़ है
0: जी है। तो
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं दर्पण रेडियो हिंदी कार्यक्रम जो रेडियो 2000 FM 98.5 आता है हर रविवार को 9 से 11 बजे तो आज के कार्यक्रम में हम जैसे संजीव जी ने बताया था कि डिंपल कपाड़े के बारे में बात करेंगे हम देखते हैं कि इस महीने में किसी बड़े कलाकार की कोई बर्थडे आ रही है तो उस विषय को लेकर के हम चर्चा का विषय बना लेते हैं और एक हिंदी में नाटक का मंचन हो रहा है जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज़ तो उसके जो निर्देशक हैं दिनशा पालखी वाला उनसे थोड़ी सी बात कराएंगे
0: जरूर
1: हाँ तो संजीव जी आप डिंपल के फैन हैं
0: जी मैं हम सभी फैन हैं मेरे ख्याल से जो डिंपल जी ने जब फिल्म में आई थी शायद हम सभी पढ़ रहे थे उस वक्त और जिसको बोलते हैं ना वो एक अमिट छाप छोड़ गई सबके जो दिमाग हाँ। पे
1: सनसनीखेज ढंग से जी मेरे ख्याल से 73 की बात है 72-73 की जब बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी
0: जी
1: तो उस टाइम पे मतलब सेंसेशन बन गई थी बॉबी और फिर सब लोगों में बॉबी का बड़ा क्रेज था वो GTS मोटरसाइकिल
0: जी
1: ऋषि कपूर चलाते थे
0: यस
1: वो अपने एक आइकॉनिक बन गई थी
0: जी
1: और ऋषि कपूर के साथ में डिंपल की जो जोड़ी बनी थी वो मतलब जोड़ी काफ़ी मतलब फेमस हुई थी
0: जी
1: तो आज बात करेंगे हम डिंपल के बारे में गाने भी कुछ सुनाएंगे
0: जी
1: अच्छे से मधुर गाने लेके आए संजीव जी
0: बहुत ही खूबसूरत गीतों का कलेक्शन है
1: हाँ
0: तो उनकी जो पहली फिल्म थी पहले उसी से आज का कार्यक्रम शुरुआत करें
1: गाना हो जाए
0: चलिए
2: सोची तो रहा हूँ
3: क्या
2: बा

0: तो श्रोताओं ये गीत हमने फिल्म बॉबी से लिया था और इसको गाया था शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने और शायद जैसे सबको पता ही है कि इसमें ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया इस फिल्म में डेब्यू किए थे
1: श्रोताओं मैं लाइन पे ले रहा हूँ दिनशा पालखी वाला को जो कि सिडनी के रंगमंच की एक बड़ा नाम है सिडनी का सौभाग्य है कि कई सारे अच्छे नाटक देखने को मिले हैं इस बीच में और उसी कड़ी में एक नया नाटक आ रहा है जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज़ और उसके निर्देशक हैं दिनशा पालखी वाला तो हमारे स्टूडियो में एक संजीव जी जिनकी आवाज़ बुलंद है और दूसरे दिनशा जी है जो अपनी बुलंद आवाज़ के लिए रंगमंच पे मतलब चार चांद लगा देते हैं दिनशा जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है तो दिनशा जी ये एक नया नाटक आ रहा है हमने सुना है कि जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज़ बड़ा नाम सुन के बड़ा आकर्षक नाम लगता है तो आप कुछ बताइए इसके बारे में जी
2: जो 2011 में पहले बार एनसीपीए के कंपटीशन में स्टेज किया था उस वक्त वो सब एक आठ मोनोलॉग्स थे तो तीन साल पहले मैंने जब ये प्ले पढ़ा तो वो जो हर एक कैरेक्टर की जो स्टोरी उसमें कही गई है उससे आई गॉट अट्रैक्टेड पर चैलेंज था कि हमारी सिडनी ऑडियंस आठ मोनोलॉग एक शाम में देखने के लिए थक जाते हैं
1: जी
2: तो दैट्स वेयर आई वर्कड ऑन इट एंड आई हैव अडैप्टेड इनटू अ फुल फ्लेज प्ले तो उसमें सब कैरेक्टर्स जो आते हैं वो सब हर एक मुंबईकर है
1: जी
2: और अपनी अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं और सेटिंग है ईरानी काफे जो मेरे बचपन की याद है जहां हम लोग जाते थे और सबसे घुल मिल जाते थे और हंसी बोल हंसते थे मजा करते थे सो मैंने पूरा नाटक उस सेटिंग में लगाया हुआ है
1: चलिए सिडनी वालों का जो इतना सौभाग्य है कि इतना अच्छा नाटक देखने को मिल रहा है तो दिनशा जी आपका तो बहुत पुराना नाता है रंगमंच से आप इंडिया में भी जो काफ़ी एक्टिव थे रंगमंच में तो थोड़ा सा बताइए कि आपको कैसे मतलब इस बीच में कैसे इंटरेस्ट जगा आपको प्ले में स्टेज में
2: स्टेज में मैं जब स्कूल में था तब से मुझे वहाँ से इंटरेस्ट था मेरा एक मोनोलॉग प्ले स्कूल के आखिरी साल में मैंने किया था वो शाहजहाँ बैठा हुआ है अपने कमरे में और मुमताज का मुमताज महल देख रहा है वो मोनोलॉग से मैंने शुरू किया था
1: जी
2: उसके बाद पासी रंगमंच में काफी काम किया 1972 के आसपास
1: जी
2: और उस बीच में देन प्रोफेशनली इंडिया से दूर रहना पड़ा एंड ऑल दैट तो जरा गैप आ गया बाद में सिडनी 1990 में जब मैं आया
1: जी
2: तब से मैंने गुजराती प्लेस शुरू किए और उसके बाद मेरे दोस्त विपुल आ गया
1: जी
2: तो और मजा आ गया तो हमने काफी हिंदी गुजराती प्ले किए और उसके साथ काफी हिंदी भी अंग्रेजी भी किए
1: जी नहीं विपुल विपुल व्यास तो मतलब बहुत जाना हुआ हमारा नाम है बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं और उनके साथ में आपने कई सारे प्ले किए और मेरे पास लिस्ट है जैसे कि सेल ऑफ द मिलेनियम था और गोलमाल था और हुतुतु था तो ये सब नाटक सिडनी वालों को देखने को मिले और उसमें आपका भी उसमें पार्ट रहा
2: दो प्रोफेशनल साथ में मिल गए
1: जी
2: तो वी वर फीडिंग ऑन ईच अदर देन वी हैड पीपल लाइक अपर्णा तिजोरी वाला एंड पूरा फैमिली हो गया
1: जी
2: उस समय हमारे प्रदीप भाई थे
1: प्रदीप पांड्या जी हाँ
2: हाँ तो वैसे एक एक फैमिली हो गया और बस वहां से हमारी सफर शुरू हुई और अब चलती रहती।
1: अब फिर आपने डायरेक्शन की तरफ भी मुख मोड़ा थोड़ा सा, तो आपने प्ले लेके आए थे आप बापू डाउन अंडर।
2: हाँ, मैंने वो मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं हमेशा सोचता है कि जो हम फिलोसॉफी होती है अहिंसा की, कि मैं एक गाल पे चांटा मारा तो मैं दूसरा दे दूंगा, मगर हमारे करंट दुनिया में क्या ये हो सकता है? तो वो जो प्ले था वो मैंने लिखा और उसमें मैं बापू की एक्टिंग भी की है। कभी मेरा फोटो दिखाऊंगा, मैंने पूरी बाल सेव कर दिए थे, चेस्ट सेव कर दी थी तो लुक लाइक बापू।
1: ओहो, अच्छा अच्छा। फिर अभी हाल फिलहाल में सिडनी वालों को एक नाटक देखने को मिला था टुकड़े, जिसमें आपकी एक मुख्य भूमिका थी, तो वो भी काफी अप्रिशिएट किए।
2: हमारे अजय भाई भी थे हमारे साथ।
1: हाँ, बस सौभाग्य मिला आपके साथ काम करने का। तो दिनचर भाई, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप इतने सालों से सिडनी में हैं, तो लोगों का नाटकों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा है आपको लगता है?
2: हाँ जरूर, I'll tell you, हम जब मैंने और विपुल ने शुरू किए थे, तभी अगर हम $5 की टिकट रखते थे तो पूछते थे कि अरे वही तो कम्युनिटी का है, मुफ्त में क्यों नहीं। अभी आज जब हम टिकट के बुकिंग खोलते हैं
1: जी,
2: तो हमें पहला कॉल आता है हमें सबसे फ्रंट रो जो हो वो दे दो
1: जी,
2: वो प्राइस नहीं पूछते।
1: अच्छा।
2: तो और विपुल और मैं हमेशा हंस रहे थे वो टाइम पे
1: जी,
2: कि भाई नाटक करते करते हमें हमारी ऑडियंस को भी सिखाना पड़ेगा कि अच्छे नाटक कैसे एंजॉय कर सकते हैं
1: जी।
2: तो बड़ा फर्क आ गया है और इसके कारण हमें भी कुछ करने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि ऑडियंस का रिस्पॉन्स तो हमारा ब्लड है यार।
1: जी जी हाँ। पर दिशा जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, देखिए इतनी मेहनत करते हैं नाटक में, बहुत मुश्किल होती है पूरे कास्ट को जमा करना, रिहर्सल करना उसके पीछे, और सबको मतलब टाइम देना, हम प्रोफेशनल तो है नहीं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी एक या दो यहाँ से तीन शो होते हैं।
2: अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू वर्क विद द डेमोग्राफी एंड कितना हो सकता है
1: जी,
2: क्योंकि फिर भी नाटक के शौकीन है
1: जी जी हाँ,
2: पर इतने नहीं के हम 350 सीट के ऑडिटोरियम तीन चार बार भर सकते।
1: हाँ जी हाँ, नहीं पर इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि पहले एक ही होता था शो, अब दो दो तीन तीन शो भी होते हैं नाटकों के।
2: और थिएटर के हिसाब से मैंने जो किया था तो पेरिफेरल
1: जी,
2: वो मैंने मेरिकवेल में किया था, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट अपना मुंबई के पृथ्वी थिएटर जैसा थिएटर है
1: जी,
2: तो वहाँ हरगिज हम लोग दो तीन दिन कर सकते थे, क्योंकि पब्लिक को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, किसी को मेटिनी में आना है, किसी को रात को आना है
1: जी,
2: तो और बड़े सबसे बड़ी चैलेंज ये है जो हम सब नाटक वाले हमारी काउंसिल को और सबको चेस कर रहे हैं, कि जो भी थिएटर हमें मिलते हैं वो काफी महंगे हैं और वो सब प्रोफेशनल्स की ओर होते हैं
1: जी।
2: कम्युनिटी थिएटर के लिए ऐसा कुछ नहीं है जहां अच्छा थिएटर रीजनेबल प्राइस में लेकर, हमारे आर्टिस्ट तो खुश हो गए तीन शो भी होगा तो
1: जी,
2: पर सबसे बड़ा खर्चा तो थिएटर का हो जाता है, इसलिए
1: हाँ, देखिए अभी इतना इतना इतना एफर्ट करते हैं और थिएटर का पैसा पूरे सब मिला करके ना, तो कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रेक इवन भी नहीं होता।
2: हाँ, हम लोग तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे आर्टिस्ट एक पैसा नहीं लेते,
1: जेब से जाने, कई बार जेब से डालना पड़ता है नाटक करने के लिए।
2: मुझे वो याद मत दिला दो यार।
1: अच्छा, तो आते हैं इस नाटक पे, जो नाम है बॉम्बे टॉकीज, तो ये हो रहा है पैसिफिक क्रिश्चियन स्कूल में 4 जुलाई को।
2: ड्यूरल
1: में है 4 जुलाई को। आप जो है गूगल सर्च कर सकते हैं और टिकट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी काफ़ी कुछ भर चुका है पर कुछ टिकट्स अवेलेबल हैं हमारे सुनिश्चितताओं को, तो
3: और उसके साथ एक और चीज है कि जो ईरानी कैफे का माहौल हमने खड़ा किया स्टेज पे
1: जी
3: उसके हिसाब से हमने उधर का केटरिंग भी ऐसे ही रखा है जो टिपिकल ईरानी रेस्टोरेंट में खाना मिलता है
1: जी
3: वही सबको मिलेगा और ऑडियंस नाटक शुरू होने के पहले या नाटक खत्म होने के बाद वहां रुक के अपना खाना एंजॉय कर सके
1: आपने याद दिला दी इंडिया की जो 70s 80s में होता था तो वही माहौल
3: अभी भी होता है
1: हां वो भी वही
3: अभी इतना नहीं होता
1: जी
3: अभी इतना नहीं होता है
1: जी जी वाह मैं देखूंगा दिनचर्या जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा तो आज तो हम एक पहेली रन कर रहे हैं जिसमें जो श्रोता हैं हमारे एक सवाल पूछेंगे उनसे तो उसको फिर दो टिकट मिलेंगे उस नाटक के और बाकी श्रोताओं से हमारा जो आग्रह है कि वो इस नाटक को जरूर देखें बहुत अच्छा नाटक होने वाला है
3: थैंक यू वेरी मच
1: आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दीक्षा जी

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अजय जी से पूछते हैं कि आप डिंपल जी के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन लाए हैं.
2: जब शुरू में डिंपल का पांडे का लोगों ने नाम सुना था
1: जी
2: बॉबी के संदर्भ में, तो उसकी बैकग्राउंड ऐसी थी कि राज कपूर मूवी बना रहे थे बॉबी
1: जी,
2: और उन्होंने ऑडिशन किया, तो ऑडिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया डिंपल ने, और डिंपल खुद को लगता था कि उनका ऑडिशन अच्छा नहीं गया, शायद उनको रोल नहीं मिलेगा, पर राज कपूर उनके स्पॉन्टेनिटी से है ना और उससे बड़े इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने कास्ट कर लिया. अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे वो
1: जी,
2: रिची को लॉन्च कर रहे थे. पर उसके पहले की कहानी आपको शायद पता ना हो कि एक पिक्चर बनी थी संघर्ष.
1: अच्छा.
2: उसमें हीरोइन थी वैजयंती माला.
1: ओके.
2: तो उसमें जो वैजयंती माला का बचपन का रोल था वो डिंपल को ऑफर किया गया था.
1: ओके.
2: हाँ, पर डिंपल खुद ने रिजेक्ट किया था वो पिक्चर उन्होंने करी नहीं.
1: अच्छा,
2: संघर्ष. हाँ, संघर्ष उसके पहले की बात है.
1: हाँ, हाँ.
2: और ये भी कहा जाता है कि गुड्डी पिक्चर में जो रया जय बहादुरी का रोल था
1: जी,
2: उसके लिए भी डिंपल को सेलेक्ट किया गया था.
1: अच्छा.
2: पर शायद ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि डिंपल मतलब वो उस रोल में फिट नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी.
1: अच्छा.
2: तो पहले ये दो पिक्चर में भी पहले बात हो चुकी थी उनके, इसके बाद में रोल बॉबी उन्होंने करी.
1: ओके.
2: तो एक संजीव जी गाना हो जाए.
1: बिल्कुल.
3: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ.

0: श्रोताओं, ये गीत हमने फिल्म बॉबी से लिया था, जिसको गाया था लता मंगेशकर ने, और आइए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश.
1: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters, authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
0: Shrotaon, ye tha hamare sponsor Curry Master ka sandesh.
2: Sanjeev ji, Bobby picture ki ek baat aur thi.
0: Ha.
2: Ki jo singer the Shailen Singh, wo bhi dhamake se aaye the.
0: Okay.
2: Us क्योंकि हम सब लोग आदि थे रफ़ी साहब किशोर मन्ना डे और मुकेश की फिर एक रिफ्रेशिंग वॉइस आई थी शैलेंद्र सिंह की
0: और वो भी काफ़ी यंग
2: हाँ काफ़ी यंग था मेरे ख्याल से पहली पिक्चर थी उनकी
0: जी.
2: और काफ़ी पॉपुलर हुए थे मतलब उनके गाने शैलेंद्र सिंह तो शायद बाद में उतना उनका करियर रहा नहीं पर जितना भी था वो मतलब
0: सुनते हैं कि वो भी शायद एक्टिंग के लिए थे एंड देन ही गॉट अ ब्रेक एज अ सिंगर या समथिंग लाइक दैट.
2: अच्छा अच्छा हाँ
0: तो
2: तो चलते हैं डिम्पल जी के बारे में बात कर रहे थे हम.
0: हाँ
2: तो वो केवल 14 साल के थे जब उन्होंने साइन की थी बॉबी.
0: अच्छा
2: हाँ और जब बॉबी रिलीज हुई थी तो वो 15 साल की थी.
0: ओके.
2: और राजेश खन्ना जी उनसे इतने ज़्यादा मतलब लट्टू हो गए थे कि उन्होंने मतलब सीधे शादी ही कर ली. और राजेश खन्ना डिंपल की शादी बॉबी के रिलीज से पहले हुई थी.
0: अच्छा
2: हाँ
0: तो हाउ ओल्ड वाज डिंपल कपाड़िया?
2: 15 साल.
0: 15 साल में शादी
2: शादी हो गई थी. हाँ और राजेश खन्ना की ऑब्वियसली उम्र कुछ ज़्यादा थी.
0: वाओ.
2: तो और फिर उन्होंने बॉबी हिट हो गई भी सुपर हिट हुई और डिंपल ने अनाउंस किया कि वह मूवीज क्विट कर रही हैं. हाँ तो बॉबी के मतलब शादी पहले होगी बॉबी रिलीज बाद में हुई इतनी आइकॉनिक फिल्म बनी वो. तो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ मतलब घर संभालने में लग गई वो. दो बच्चे भी हुए उनके पर
0: जी
2: शादी उनकी कुछ ज़्यादा चली नहीं.
0: ओके.
2: कि डिम्पल का कहना है कि भाई देवर टू पीपल नॉट फॉर ईच अदर मतलब उनकी पर्सनैलिटीज बहुत अलग थी. तो
0: एंड लाइक मे बी उम्र का भी काफ़ी
2: उम्र का कपड़ रहा हो. आप वो खुद कहते हैं कि राजेश खन्ना जो है थोड़े से मतलब कमिटमेंट उतना नहीं था शादी के लिए और थोड़ा सा मतलब उनका रुझान कहीं और भी होता था लोगों का तो मतलब समझ आइए लोग.
0: जी
2: तो 1957 में पैदा हुई थी डिंपल
0: जी.
2: तो हमारी आपकी बड़ी बहन ही हुई.
0: बिल्कुल. और आपको एक सुनने वालों को भी बताऊं कि एक बार मैं बम्बई में था तो एक फिल्म थी कर्म योद्धा और राज बब्बर और डिंपल कपाड़िया की थी. तो तब बाई चांस हम भी शूटिंग देखने को पहुंचे थे और नया नया शौक था तो हमने कहा भाई डिंपल जी के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं. तो जब फ़ोटो खिंच गई उसके बाद उनकी खूबसूरती और हमारी खूबसूरती में इतना बड़ा गैप था कि उस दिन से कसम खाई कि अब कोई फिल्मी हीरोइन के साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे.
2: या कसम ये भी खाई कि अपनी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे उस लेवल तक लेके आएंगे. तो आपको इंस्पिरेशन मिला.
0: जी तो चलिए एक और एक खूबसूरत सी वार्ता लेके आया हूँ चार धाम के बारे में. कुमार विश्वास जी द्वारा उन्होंने सुनाई है तो आइए सुनते हैं.
3: बहुत बहुत स्वागत आपका कथा के इस क्रम में. और इस क्रम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वे चार धाम हैं जहां की यात्रा संपन्न करके व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है. ये चार धाम हमारी आस्था के युगों युगों से प्रतीक हैं. बद्रीनाथ सतयुग के प्रतीक हैं तो रामेश्वरम त्रेता युग के साक्षी रहे हैं. द्वारिका वह पुण्य भूमि है जिसे द्वापर के उस अखिलेश्वर को समर्पित माना जाता है और जगन्नाथ धाम हमारे कलयुग में इस धर्म का प्रतिनिधि है. धर्म के दो पुत्र हुए एक नर और एक नारायण दोनों बेहद सात्विक बेहद अच्छी प्रवृत्ति के एक दिन लाड़ से उमगी हुई उनकी माता ने प्रसन्न होकर उन दोनों बच्चों से कहा कि तुम मेरे दोनों पुत्र अत्यंत मर्यादित और बहुत अच्छे संस्कार के हो मेरा मन है मेरी इच्छा है कि इसके माँ के मातृत्व के अतिरिक्त भी मैं तुम्हें कोई वरदान दूं दोनों बच्चों ने एक ही वरदान माना दोनों ने हाथ जोड़कर माँ से कहा धर्म के प्रति पिता के प्रति हमारी गहरी रुचि से आप मोहित हैं ही माता आप हम दोनों को तपस्वी होने का वरदान दीजिए माँ हैरान हो गई क्योंकि जिन पुत्रों से इतना अधिक मोह था जितना अधिक स्नेह है जितना लाड़ है अगर उन्हें तपस्वी होने का वरदान देती है तो वे तपस्या के लिए परिवार को घर को छोड़कर चले जाएंगे लेकिन वचनबद्ध माता ने अंततः पुत्रों के मोह को पीछे करके अपने वचन की पालना की और दोनों पुत्रों को परम तपस्वी परम तेजवान होने का वरदान दिया अपनी माँ से मनचाहा वरदान प्राप्त करने के बाद नर और नारायण घर परिवार की देहरी को त्याग अपने संकल्पों को हिमालय जैसी ऊंचाई देने के लिए पर्वतों के उस प्रदेश में पहुंचे जहां उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी बद्रीनाथ वही पवित्र भूमि है जहां धर्म के उन यशस्वी पुत्रों ने सहस्रों वर्षों तक घोर तप किया है जिस पर्वत पर नर ने तपस्या की वे इतिहास के शिलालेख पर नर पर्वत के नाम से अंकित हुआ और जिस पर्वत पर नारायण ने तपस्या की उसे आज भी हम नारायण पर्वत कहकर प्रणाम करते हैं आइए अब बढ़ते हैं दूसरे धाम की ओर यानी कि त्रेता युग का प्रतीक भगवान की पुण्य लीलाओं का साक्षी वह रामेश्वर तट जहां अनाचार के विरुद्ध एक तपस्वी के युद्ध का ऐसा उद्घोष हुआ कि विश्व आज भी उस आतताई के खिलाफ भगवान की उस भूमिका को दशहरा और दिवाली के रूप में मनाता है अपने समय के सबसे अधिक पराक्रमी बुद्धिमान तेजस्वी और वंश परंपरा के समस्त गुणों के साथ अभिषिक्त होने वाले अपराधी रावण का वध करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी प्रभु ने श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया था और भगवान शंकर इस दुनिया में सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हर संकल्प को सहारा देने की अवधारणा तब से लेकर आज तक दोहरा रहे आइए अब प्रस्थान करते हैं द्वारिका धाम की ओर भूमि का वो पवित्र पावन हिस्सा जहां भगवान ने अपने सहकारी रूप को प्रकट किया और उसे राजधानी बनाया कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर महान महारथी वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा ने द्वारिका को बनाया था और उसी द्वारिका पुरी में अपने शासन के कारण माखन चोर द्वारिकाधीश कहलाए भगवान की राजधानी के बाद कथा के अंतिम पड़ाव में चलते हैं इस जग के नाथ स्वामी जगन्नाथ जी के धाम की ओर इसे लेकर भी बड़ी रोचक कथा है एक बार इंद्रद्युम्न नामक एक राजा के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि एक बड़े पेड़ के तने में मेरा विग्रह बनवाओ और इसे किसी सुंदर मंदिर में स्थापित करो श्री कृष्ण तो स्वप्न में आग्रह करके चले गए पर राजा की नींद उड़ गई उसे पूरे भारत में ऐसा कोई मूर्तिकार नहीं मिला कि जैसी मूर्ति उसने स्वप्न में देखी थी ऐसी निकाल सके एक दिन राजा के द्वार पर एक बूढ़ा मूर्तिकार आया और उसने कहा मैं ये काम करने के लिए तत्पर हूं किंतु मेरी एक शर्त है मैं प्रतिमा का निर्माण एक बंद कक्ष में करूंगा और प्रतिमा का निर्माण पूर्ण होने से पहले उस कक्ष का दरवाजा अगर किसी व्यक्ति ने खोला तो काम जहां पर है मैं वहीं पर रोक दूंगा काम शुरू होने लगा अंदर से ठक ठक की कुदाल की खुरेचने की रंदे की घिसने की आवाज आती थी अचानक बहुत समय के काम के बाद आवाजें बंद हो गई ठंड का समय था राजा को उत्सुकता हुई कि आवाज क्यों बंद हो गई कहीं बूढ़े मूर्तिकार का स्वास्थ्य खराब ना हो गया हो कुछ समय प्रतीक्षा करके राजा ने कमरे का दरवाजा खुलवा दिया राजा जैसे ही अंदर पहुंचे तो अजीब चमत्कार था मूर्तिकार गायब था और मूर्तियों के अधूरे बने हुए टुकड़े पड़े हुए थे वह मूर्तिकार कोई और नहीं स्वयं कला के सृजना के देवता भगवान विश्वकर्मा थे उस कमरे में तीन बड़ी मनहर मूर्ति जिनमें थोड़ा सा काम बचा हुआ था राजा ने उस प्रतिमा को उसी कमी के साथ उसी स्थिति में स्वीकार किया और मंदिर में स्थापित किया तब से भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलदाऊ बलराम और अपनी लाडली बहन सुभद्रा जी के साथ वहां विराजमान हैं और लाखों लाख भक्त वहां आकर भगवान के परिवार का आशीर्वाद लेते हैं भारतीय संस्कृति में आस्था के इन पूज्य चार केंद्रों की कथा हमें बहुत कुछ सीख देती है जैसे पहली कथा बद्रीनाथ नर और नारायण के सम्मिलित पुरुषार्थ के बारे में बताती है धर्म की कीर्ति केवल नारायण के सहारे संभव नहीं है जब तक नर उद्यम नहीं करेगा नारायण भी कृपा नहीं इस सृष्टि के समस्त शुभ संकल्प नारायण और नर के संयुक्त प्रयास से ही संभव है इसका दूसरा उदाहरण कथा के दूसरे भाग का सार क्या है जगन्नाथ धाम की कथा यह बताती है कि जब तक संभव हो सत्ता को किसी भी शिल्पकार पर अपनी शर्तें थोपने की बजाय उसकी शर्तों को स्वीकार कर लेना चाहिए जब जब हस्तक्षेप हुआ कला की प्रतिमाएं अधूरी रह गई इसलिए हर सुंदर निर्माण की आशा रखने वाले राजाओं के लिए हर बेहतर रचना की उम्मीद करने वाले समाज के लिए यह अनिवार्य है कि वे कला के साधकों पर अपनी शर्तें थोपने के बजाय पूरे सम्मान के साथ उन्हें उन्मुक्त वातावरण दे ताकि उनकी कलाएं भी भगवान की तरह पूरे विश्व में आदर पाएं और युग युगांतर तक बची रहे धामों के साथ परिचित होने पर एक और आवश्यक संदेश समझ में आता है ऐसी मान्यता है कि सतयुग में धर्म के चार पैर थे त्रेता में तीन पैर हो गए द्वापर में दो बचे यानी कि धर्म की संकल्पना क्रमशः डगमगाती गई धर्म के प्रति लोगों में रुचि कम होती गई कलयुग में तो धर्म केवल एक पांव पर टिका है किंतु अगर ये पांव भी मजबूत है ये पांव भी अगर भक्ति का है तो फिर तुलसी बाबा का कहा सिद्ध हो जाता है कलयुग केवल नाम आधार आप नाम लीजिए और आपका काम होता है
4: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention The Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of The Open Radio.
0: श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश तो आशा करते हैं कि आपको डॉक्टर कुमार विश्वास की जो एक वार्ता थी वो पसंद आई होगी जी हाँ उन्होंने चार धामों का वर्णन किया है और चारों धाम भारत के चार कोनों पे थे बद्रीनाथ द्वारका पुरी और रामेश्वरम और ये कोशिश थी कि पूरे पूरे देश को एक साथ पिरोया जा सके और चलिए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और भी कई खूबसूरत से गीत हैं और अजय जी डिंपल जी के बारे में काफ़ी जो जानकारी लाए हैं आइए सुनते हैं
2: इससे पहले मैं ये कह दूं संजीव जी कि हम आज दो पहेली रन कर रहे हैं
0: अच्छा
2: हाँ तो पहली के दो टिकट मिलेंगे जीता को
0: हाँ।
2: नाटक जो है बॉम्बे टॉकीज
0: अच्छा
2: उसके दो टिकट मिलेंगे तो सवाल है कि कपूर खानदान जो था
0: जी
2: हिंदी फिल्मों का
0: जी
2: उनका एक वो था रंगमंच का थिएटर
0: हाँ
2: उस थिएटर का नाम बताइए जो कपूर खानदान का थिएटर है
0: बंबई में मैं उसको थोड़ा आसान कर देता हूँ
2: हाँ उस थिएटर का नाम बताइए और विजेता को मिलेंगे दो टिकट नाटक बॉम्बे टॉकीज के
0: अच्छा
2: क्योंकि रंगमंच से रिलेटेड है
0: जी
2: तो हमने सोचा चलो कि सवाल उसी हिसाब से रखते हैं दूसरी पहली है
0: हाँ।
2: जो हमारे जो पिछली बार कार्यक्रम में आए थे केदार जी
0: हाँ।
2: उनका कार्यक्रम हो रहा है गाता रहे मेरा दिल
0: अच्छा।
2: तो उसी उस कार्यक्रम के दो टिकट मिलने वाले हैं
0: जी
2: और पहली है आज के विषय से संबंधित तो डिंपल कपाड़िया की बहन का नाम बताएं
0: जो हाँ। बहुत ही आसान सा सवाल है दोनों और
2: आपके लिए बड़ी हर चीज़ आसान है